0: सस्ता।
1: रिलायंस फाइनेंस लिमिटेड, वित्तीय सेवा को और को परिभाषा।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज, रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।

बहरीन एक्सेस हमने गहर्स के साथ ही इंटरनेट ऑनलाइन को डॉट रेड बहरीन डॉट वार्ज मार्फत संसार भर के साथ प्रसारण भई रही को साझा 46 बजे को खबर में मेक को नमस्कार खबर को शुरू में मुख्य मुख्य